ते होली करडिया आने सिंह चिरतिया उनते होली करडिया भय बिल्ले दे।